सो दर कीहा सो घर कीहा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वामन हारे केते राग परि सो कहियन केते गामन हारे गावे तोहनो पौन पणी बसंतर गावे राजा धर्म दुवारे गावे चित गुप्त लिख जानहि लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी गावे इंद अंदासन बैठे देवते अंदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग विदा नाली गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मस पयाले गावन रतन उपाय तीरी आठ सड़ तीर्थ नाली गावह जोध महाबाद सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारी से तुदनो गावह जोतद पावन रते तीरे भगत रसाले होर केते गावन सेवा चेतन आवन नानक क्या विचारे सोए सोए सदा सच साहिब साचा साची नाय है पे होशे जाए ना जासी रचना जिन रचाए रंगी रंगी पाते कार कर जिन सी माया जिन उपाय कार कर वेखा कीता अपना जीव तिस दी वडियाए जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म ना करना जाए सो पात साहू साहा पात साहिब नानक रहन रजाए मुंदा संतोख शर्म पद झोली ध्यान की करे बपूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीता आदेश तसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घटघट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाके रिद सद्यवरा साद संजोग वजोग दुकार चलावे लेखे आवह भाग आदेश तस आदेश आद अनिल अनाद अनाहित जुग जुग एको वेश एका माई जुगत वे आई तीन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फरमान ओह वेखै ओना नदर न आवै बहुता एहो वडाण आदेश तसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहित जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किस पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सचे की साची कार आदेश तसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहित जुग जुग एको वेश एक दो जीपह लख हो है लख हो वह लख वेश लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश इतराहे पत पवड़िया चढ़िया होए अकीस सुन गल्ला आकाश के कीटा आई रीस नानक नदरी पाईया कूड़ी कूड़ा ठीस

ਟੁਟਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੂਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ ਰਾਤੇ ਰੁੱਤੇ ਥਿੱਤੇ ਵਾਰ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੇ ਥਾਪ ਰੱਖੇ ਧਰਮਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥਾ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੀਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾੜਤ ਘੜੀਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਿੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਧ ਕੀਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੀਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੀਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦਾ ਕੀਤੀਆ ਸੁਰਤੇ ਸੇਵਕ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਹੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪਰਚੰਡ ਤਿੱਥਾ ਨਾਦ ਬਨੋਦ ਕੂੜ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥਾ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਸੈ ਪਸਤਾਏ ਕਾਹਾ ਤਿੱਥਾ ਘੜੀਆ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥਾ ਘੜੀਆ ਸੁਰਾਂ ਸਦਾ ਕੀ ਸੋਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥਾ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮਹਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥਾ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹਿ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਹੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨਕਾ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ਤਿੱਥਾ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥਾ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਾਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥਾ ਤਾਂਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿੱਥਾ ਲੋ ਅਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵਾ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖਾ ਵਿਕਸਾ ਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਆਹਿਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਣ ਤਵਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਟਾਲ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੇ ਆਈਆ ਬੁਰੇ ਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਸੁਟੇ ਨਾਲ ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੇ ਸਿਉ ਕਹੀਆ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵਣ ਤਦਨੋ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਗਾਵਾ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵਣ ਤਦਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਣ ਤਦਨੋ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵਣ ਤਦਨੋ ਇੰਦਰ ਅੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾਲੀ ਗਾਵਣ ਤਦਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਣ ਤਦਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਣ ਤਦਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਣ ਤਦਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਣ ਤਦਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ ਯੁਗ ਯੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੀ ਗਾਵਣ ਤਦਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨ ਮੋਹਣ ਸੁਰਗ ਮਸ ਪੈਲੇ ਗਾਵਣ ਤਦਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੀਰੀ ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਨਾਲੀ ਗਾਵਣ ਤਦਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਣ ਤਦਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵਣ ਤਦਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ਸੇਈ ਤਦਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤਦ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਤਦਨੋ ਗਾਵਨ ਸੇਵਾ ਚੇਤਨ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸੋਏ ਸੋਏ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਏ
रंगे रंगे पाते कर कर जिनसे माया जिन उपाई कर कर देखा कीता अपना ज्यों तिसदी वडियाई जो तिस भावै सोई कर सी फिर हुक्म न करना जाई सो पातशाहू साहा पत साहिब नानक रहण रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोई केवड वड्डा डीठा हुए कीमत पाए न कहया जाई कहणी वाली तेरे रह समाई वड्डे मेरे साहिबा गहर गबीरा गुणी गहीरा कोई न जाना तेरा की ताके बड़ चीरा रहा साब सुरते मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहण न जाई तेरी तिल वड्याई साब सत साब तप साब चंगे आईया सिद्धा पुरखा के बड़े आईया तुदबिन सिद्धि किने न पाईया कर्म मिला नाही ठाक रहाईया आखण वाला क्या विचारा सिवती परे तेरे भंडारा जिस तू देह तसै क्या चारा नानक सच सवारण हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाहूं आखण औखा साचा नाओ साचे नाम की लाग्या भूख उत भूखै खै चलिए दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचा नाए रहाओ साचे नाम की तिल वडियाई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा न होवै घाट न जाए ना उमरै न होवै सोग देंदा रहे न चूकै भोग गुण एहो होर नाही कोई ना को होवा ना को होए जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात जिंदन करकै की तीरात खसम वसारे ते कम जात नानक नावै बाद सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जान सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे करम सतगुर सरणाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोकौ राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहा हर जन के बड़पाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिला तृप्ता सह मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक ना प्रगास रा गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उदम जा आहर हर जी उपरिया सैल पत्थर महजंत उपाय ताका रिजका गया कर धरिया मेरे माँ दुख जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाऊ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक सबाही ठाकुर काहे मन पाओ करिया उडे उड़िया वैसा कोसा तिस पासा बचरे सरिया तिन कमण खलावा कमण च गावै मन मैं सिमरन करिया साबन दान दस टसदान ठाकर कर तल तरिया जन नानक बल बल साध बल जाइया तेरा अंत न पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गमागम अपार सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजन हार सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार हर त्याव हो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक बिखारी जी सब तेरे चूज बडाणा तू आपे दाता आपे पुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बे अंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबान हर त्यावह तुद जी से जन जुग मैं सुख वासे से मुगत पए जन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन नर पौ जिन हर नर पौ त्याया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी
तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तप तपह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु समरत साहित जी कर किरिया खट कर्म कर अंता से भगत भले जन नानक जी जो भावह मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख परंपर करता जी तुद जीवड़े अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोए तुद आपे भावै सोए वरता जी तू आपे करे सो होए तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी तुद आपे सृज सब गोए जन नानक गुण गावा करते के जी जो सबसे का जान होई आसा महला चौथा तू करता सचार मंडा साही जो तो पावा सोए तेसे जो तो दे सोए हो पाई रहा साब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करे तन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप वसोड़िया आप मलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जे जंत सब तेरा खेल बजोग मिल विसड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जान हर गुण सदहे आख वखाणा जिन हर सेव्या तिन सो पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कार कर वेख्या जाना सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ा पैले नवासा पानी पाग तनह किया पंकज मोह पाग नहीं चाला हम देखा तह डूबियल मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गदिया रहाउ नाहु जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भय प्राप्त मानुख देहरिया गोबिंद मिलन के तेरी बरिया अवर काज तेरा किते न काम मिल साध संगत पज के बदनाम सरंग जाम लाग पौजल तरन का जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा जाप तप संजम तरम ना कमाया सेवा साधना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करमा शरण परे की राखो शर्मा सोहला राग गौड़ी देव की महला पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद जय घर कीर्त आखिया करते कहुए विचारु तित कर गाहो सोहला शिव रहो सृजनहार तुम गाहो मेरे नरभउ का सोहला हौ बारे चित सोहला सदा सुख होए रहा नित नित जियड़े संभाली अनदेखे गादे बनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कमण समार संबत साहा लिखिया मिलकर पाभो तेल देहो सज्जन आसीसड़िया ज्यो हवै साहब सुमेल घर घर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से दे अवन राग आसा महला पहला से कर से गुर से उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक बाबा जय घर करते कीर्त होए सो कर राख बढ़ाई तोए रहा विश्वय चस्या कड़िया पहरा थिते वारे माहो हुआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के ते वेश राग तनासरी महला पहला गगन मैं थाल राव चंद दीप कबनी तारका मंडल जनक मोती तूप मल आन लो पवन चबरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पाप खंडना तेरी हारती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहा सहस ताव नैन नान नैन हहे तोय कौ सहस मूर्त न एक तोय सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस ताव गंध एव चलत मोहे सब मह जोत जोत है सोए तिसदा चानण सब मह चानण होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभत मंद मनो अंधनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा
काम क्रोध नगर बहु परिया मिल साधु खंडल खंडाहि पूर्व लिखत लिखे गुरपाया मन हरलव मंडल मंडाहि कार साधु अंजलि पुन वड्डाहि कार डंडौत पुन वड्डाहि रहा साकत हारा साधना जाणिया तिने अंतर होम कंडाहि ज्यों ज्यों चले चुबै दुख पावहि जमकाल सहे सर डंडाहि हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पावखंडाहि अविनाशी पुर पया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाहि हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़े वड्डाहि जन नानक नाम आधार टीक है हर नामे ही सुख मंडा।

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूरन सुबराता, केलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तु जप पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई, अड़िल सुने गोंग जो याहे सुरसना पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ नित न तिन नर की रहै, हो जो या की एक बार चौपाई को कहै, चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजय, अर्ध सहस पुन तीन कही जय, भाद्रव सुधि

सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसियाय गुरु के जन्म मरण दुख जाय हो वै सिफत खसामदी नूर अरसाह कुरसाह चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह

साधु रचनाओ राम मनाई, बिन सह के अस्त्र मन आचार्य जो लिखियो न जाई रहाओ।

अमृत है दीवा, स्वर्ग नरक अमृत भिख की सब चौगंत नियर पैसा उस्त निंदा की समझा कै लूब मोह हुनु तैसा।

देखो सोचो विचारी। रतन जन्म अपनो तैहारे गोविंद गत नहीं जानी निमख नाओ लीना भयो चरणन सयाओ वृथा और दिशदानी कहो नानक।

येन वेदो राम राम तो मनोमान्या ज्ञान यंजन गुरु साउ तो पुषान्या रहाओ।

नह पंडत नह चतुर्सेनाऊ नह फूलो न फर्म फूलानाऊ कथुन कथनी हुक्म पुछानाऊ नानक गुरमत सहज सुमानाऊ गौरी ग्वारी महला पहलाऊ बन कुंचरऊ काया उदयान गुरु अंक सच सौदुनी सान दस दुआरे शुभ सुमान चतराई ने चीन्या जाए बिन मारी क्यों कीमत पाई रहा।

मन फूलो बोचते विकार, मन फूलो सर जावे फार, मन मन हरि कंकार। मन फूलो माया कर जाई, काम बधु दूर है न ठाई, हार पाज प्राणी रसन रसाई। है बदौ गै बदौ कंचन सुत नारी, बहु चिंता प्रचाल हारी, जुए खेलन काची सारी।

माया मोह सर्वजन मन मुख कु कुछित बिके लाला सतगुर सिवी चुके जन जाला अमृत नाम सदा सुनाला गुरमुख भूजेंगे कले बलाई निकल वास सच समाए जम्मण वरना ठाकर हाय पूरे गुरु ते मत पाए कथनी कथो न आवै गोरा गुरु पुछ दीखा नाही दर होरा दुख सुख फाणे सैर जाए नानक नीच कहल लाए गौड़ी महला पहला।

पहलां ऐसो दास मिले सुख होई दुख विसरै पावे सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अरसन मज्जन चरण धूरी रहाओ नेत्र संदोखी किल बितारा जीवा सूची हर ससारा सज करनी अवय अंतर सेवाओ मन त्रिविदा सा लाखु भेवाओ।

ब्राह्म गर्भ जाने जाऊं, वीर की विविध बड़ी भजताने जाऊं, जय पर विश्रित ही मनु माने आऊं। ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुण में लेते गर्भ न बार रहाऊ। बल राजा माया अहंकारी, जागन करे बो पारो भारी, बिन गर पूछे जाए प्यारी।

लाऊ बिन जगदीश कहाँ सुगुफा लाऊ। नयन सलोने सुंदर नारी खोड़ से गाल करे तो प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी। नर कर मैं

हम मैं कर राजी भूतावही हम मैं खपी जन्म मर आवही हम मैं निबिर गुरु शब्द विचार चंचल मत ते जागे पंच सिंहार अंतर साज सहज कर आवही राजन जान परम गत पावही सज करनी गुरु परम चकावै निरपो कह कर ताड़ी लावै हौ हौ कर मरना क्या पावै पूरा गुरु पीटी सो चागर चुकावै।

दैणी हृदय सच वसी अरनाई कारण जो सकै गुण गाई नानक गुरुमुख शब्द सुमाई गौड़ी महला पहला भोले साच मिथ्या नहीं राई चाले गुरुमुख हुक्म रजाई रहे अतीत सच्ची सरनाई सचगर वैसा कारण जो है मनमुख को आवत जावत दुख मोह रहाओ अप्यो पियो कथ कथ रही है निज कर वैस सहज कर लही है हर रस वाते यो सुख कही है गुरमत चाल न चलनी डोल गुरमुत साज सहज अर बोल पीबै अमृत तत् बरोल सतगुरु देख्या दीख्या रीनी मन तन गण पू अंतरगत कीनी गतमित पाई आत्म चीनी पूजन नाम निरंजन सार परम हंस सच ज्योति उपार जय दिखो तैंगे कंकार रह निरालमयी का सच करनी परम पद पाया सीवा गुरुचरणी मन ते मन माने चूकी अहू परमणी इन मेरे कौन कौन नी तारिया हर जय संत भगत नि सितारे जाओ प्रभु पाई हम अबर ना फारे आओ आज मैल गुरु लख लखाया नचन मैन नि छाया माया साज संतोखी परम चुकाई आओ जिन कै मन वसया सच सोई तिनकी संगत गुरमुख होई नानक सच नाम मलखोई गौड़ी महला पहलाऊं।

जिन कह हृदय हर हर सोई, तिनका दर्श परस सुख होई। सर्व जिया मैंगी को रवै, मन मुख अहंकारी फिर जोनी फवै। सो पूजै जो सतगुरु पाई, हम मैं मारी गुरु सौदी पाई। अर्ध उर्द की संद क्यों जाने, गुरुमुख संद मिले मन माने। हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभु दयाल नानक जन तरिए। सोलहा अष्ट प्रिया ग्वारी गौड़ी किया, गौड़ी वैरागण महला पहला। एक ओंकार सतगुरु पुरसाद।

रहाओ। जय देखो तै रब रहे रख राखण हाराओ, तू दाता भुगता तू है तू प्राण धाराओ। कृत पया यद उर दे बिन ज्ञान विचाराओ, बिन उपमा जगदीश की बिन सैना निहाराओ। जग विन सत हम देखिया लोभी अहंकाराओ, गुर सेवा प्रूपाया सच मुक्त द्वारा निज कर महल अपार।

रहौ। सबो सूद गजीता मोह आकार मर मर जमे मारो वार। सूत के अग्न पौणे पानी माहे सूत का पूजन जेता के जखाहे। सूत का कर्म ना पूजा होए नाम रति मन निर्मल होए। सतगुरु से वै सूत के जाए मरे न जन्म काल न खाए। सासत सिमरत सूत देखो कोई बिना वै को मुक्त न होए। जुग चारे नाम गुतम शब्द विचार कलमै गुरमुख उतर सपार। साचा मरै न आवै जाए नानक गुरमुख रै समाए। गौड़ी महला तीजा।

जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल कीर्तन कौंसल शब्द श्रवण करा रहे हैं। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुना।

हमें अदिष्ट सब करै हरे अग पाप सगल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल सदा सुख मन बसै दुख संसार खोवै गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालक तो।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप।

0: माथे समस्ति प्रभुते
1: कलंकन बिना ने कलंकी स्वरूपे
0: नमो राजर्जेश्वरम परम रूपे
1: नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्धे
0: नमो राजर्जेश्वरम परम वृद्धे
1: नमो सहस्रवाणे नमो असरवाणे
0: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
1: अपेक्षीय परमी अभोगीय भुक्ते
0: नमो जोग जोगेश्वरम परम युक्ते
1: नमो नित्य नारायणे क्रूर कर्मे
0: नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर में
1: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे
0: नमो शाहंग नमो पू पू पे
1: नमो दान दाने नमो मान माने
0: नमो रोग रोगे नमस्तं सनाने
1: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्र
0: नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र
1: सदा सच्चिदानंद सर्वंग प्रणासी
0: अनुपे अरूपे समस्तुलिवासी
1: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता
0: अदो ऊर्ध्व अर्धं उंग हर्ता
1: परम परम परमेश्वर प्रोष पालन
0: सदा सर्वदा सिद्धा दयालं
1: अशेद्य अपेद्य

0: के कारण कुनंद है के रोजी दहिंदा है
1: के कर्म करीम है
0: के सर्वं कली है के सर्वं दली है
1: के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए
0: के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे
1: के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे
0: के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे
1: के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने
0: के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
1: के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे
0: के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले
1: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
0: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
1: के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे
0: के सर्वत्र सोखे के सर्वत्र पोखे
1: के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राण
0: के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे
1: के सर्वत्र मानिए सदैवं प्रदानिए
0: के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए
1: के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने
0: के सर्वत्र इंद्रिय के

0: नमोनर कना से सदैवं प्रकाश
1: अनंतं स्वरूपे अपंगं प्रभूते
0: परमात्मं प्रमाते सदा सर्वसाधारण
1: अगाध स्वरूपे निर्वाद प्रभूते
0: अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे
1: निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनु

0: आत्म बात जस के जस
1: नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्र
0: नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
1: नमो अंधकारे नमो तेज तेजे
0: नमो बिंद्र बिंद्रे नमो बीज बीजे
1: नमो राज संताम संसांत रूपे
0: नमो परम तंग तंग स्वरूपे
1: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
0: नमो मंत्र मंत्रे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने
0: नमो भोज भोजे नमो पान पाने
1: नमो क्लय कर्ता नमो शांत रूपे
0: नमो इंद्र इंद्र।

0: पंगम प्रभुते
1: वाहेगुरु जी का खालसा
0: वाहे गुरु जी की फतेह।
1: एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पाठशाही दसवीं त्वे प्रसाद सवीए श्रावक सुर समोसे दान के देख फिरियो कर जोग जति के
0: सोर सुराजन सुद सुदाजन सन समूह अनेक मति के
1: सारे ही देश को देख रही हो मत को न देखित प्राण पति के
0: श्री भगवान की पाए कृपा उते एक रति बिन एक रति के
1: माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे
0: और तुरंग कुरंग से कुदर पौन के कौन को जात निवारे
1: पारी पुजान के पूप पली बित न्यावत शीश ना जात बिचारे
0: पहे तो कहा पे पूपते अंत को ना गई पाए पधारे
1: जीत फिरे सब देश दिशान को बाजट तोल मृदंग नगारे
0: गुंजत गोड़ गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे
1: पूत पविक पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
0: श्री श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे
1: तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बिसेक है
0: वेद पुराण कते कुरान जमीन जबान सबान के बेख है
1: कौन आहार जति जर थार सबे सुबिचार हजार के देखे
0: श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रत।

0: मरोरम वासन माते मतंगन मान मिलेंगे
1: श्रीपा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे
0: वीर पार बड़े बड़ियार पछारे सार की थार पछैया
1: तोर देश मलिंद मवासन माते के जान के मान मलैया
0: गारे गरान को तोरन हार सो बातन ही चकर चार लवैया
1: साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया
0: दानव देव निंद निसाचर पूत पवेक पवान जपेंगे
1: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे
0: पुन प्रतापन बाट जैत पुन तुन पापन के बो पुंज कपेंगे
1: सात समो पर छन फिरे जल सतर सबे अब लोक जपेंगे
0: मानव इंद्र गजेंद्र नरात पर जोन त्रिलोक को राज करेंगे
1: कोट स्नान गजाक दान अनेक स्वयंवर छाज भरेंगे
0: ब्रह्म महेश्वर बिसन सची पता अंत फसे जम फास परेंगे
1: जे नर श्रीपद के प्रचय पग ते नर फेर न दे तरेंगे
0: कहां पयो जो दो लोचन मुंद के बैठ रही हो बक ध्यान लगायो
1: नाथ फिर और ये सात समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो
0: बास कियो बखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बिठायो
1: सात को सुन लियो सबे दिन प्रेम की

0: कैठा कोस्मित वसन कर कैठा
1: सगरी सिद्ध काए चंबो आज जुगात स्वरूप संभो
0: अभिछा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो
1: दुष्टिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रखाता
0: परे
1: पुरख जम पर तारे तिनके तुम सकट सप्ता।

0: ऐसा कम मूले न कीचे जित अंत पछोताई है।
1: सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले,
0: कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले।
1: अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया,
0: अंतो ना पाया किन्ने तेरा अपना आप तू जाने।
1: जी जन सब खेल तेरा क्या क्यों आँख वखाने,
0: आखे ता वेखे सब तू है जिन जगत उपाया।
1: कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया,
0: सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया।
1: पाया अमृत गुर कृपा किन्नी सच्चा मन वसाया,
0: जी जन सब तुद उपाय एक वेक परसन आया।
1: लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया,
0: कहे नानक जिसनु आप टुटा तिन अमृत गुरते पाया।
1: भगता की चाल निराली चाला निराली, भगता केरी बिखम मार्ग चलना।
0: लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुता नाही बोलना,
1: मार्ग जाना।
0: गुर प्रसादी जिन आप तजिया हर वासना समाणी,
1: कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराली।
0: जिउ तू चलाए तिव चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे,
1: जे तू चलाए तिवे चले जिन्ना मार्ग पावे।
0: कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावे,
1: जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे।
0: कहे नानक सच्चे साहिब ज्यो पावे तिवे चलावे,
1: एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया।
0: ए तिन के मन वसिया जिन तुरु लिखिया आया,
1: एक फिरे कनेरे करे गल्ला गली किने ना पाया।
0: कहे नानक शब्द सुहेला सतगुरु सुनाया,
1: पवित्र होए से जना जिनी हर त्याया।
0: हर त्याया पवित्र होए गुरमुख जिनी त्याया,
1: पवित्र माता पिता कुटुंब सहित से पवित्र संत सुभाया।
0: कहंदे पवित्र सुनदे पवित्र से पवित्र जिनी मन वसाया,
1: कहे नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर हर त्याया।
0: गर्मी सहज न उपजे बिन सहजे सहसा न जाए,
1: न जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए।
0: सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए,
1: मन तो वो सब लागो हर से रहो चित लाए।
0: कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे इव सहसा इव जाए,
1: जियो मैले बारो निर्मल जियो त मैले तिनी जन्म जुए हारिया।
0: हे तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया,
1: वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जो बेतालिया।
0: कहे नानक जिन सच तजिया पूरे लागे तिनी जन्म जुए हारिया,
1: जियो निर्मल बारो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमानी।
0: मूर्खी सोई पहुंचे नाही मनसा सत समानी,
1: जन्म रत

0: तेरा मर्तबा
1: रंग परंग अनेक न जापन करतबा
0: जी अंदर जियो सब किछ जान ला।

राम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच सुमावे। ऋग कह रहे अपरपूर राम नाम देवा मैसूर।